म हरिप्रसाद मैनाली पत्नी सिलौती र पुत्र गुमिल मालिक हाँसी मुख प्रेमी मित्र र दाजुभाइ सजिला माता पिता सन्मुख नारायण।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।

usadinku chinapala gari dinarata diana dari dari namara desa virana kala jama unsa khela tamasa ayu ghati tara gharati nasa bhaja narayen bhaja narayen bhaja hariram diyathanangu kapara chayina anjuli bahek bartana chayina rukhamani basan bhikamagi khansan tarapani asatiramana lansan bhaja narayen bhaja narayen bhaja hariram javataka tanama prana rahansa tavataka garma shudani garsan prana gaye pati patni darche thar thar kandai par par sarche bhajanarayana bhajanarayana bhajahari ram kati muni daye chan kati rangi daye chan kati latta ka premi hudaye chan tara chan gyana bina sava anda budi mati kasa sabai ko danda bhajanarayana bhajanarayana bhajahari ram गीता अलिकति जो पढ़ी लिंसन अलिकति गंगा जल निधि लिंसन प्रभु को पूजन जो जन गरलन किनती का वश में पड़लन भज नारायण भज नारायण भज हरिराम देह विचार गली गय सारा लौरो भू पर शरण सहारा केश फुले का दाँत धरे का सबथन आशय तर्फ गिरेका खेल्दै बिति गयो बाल्य अवस्था तरुणैतिर गयो तरुण अवस्था वृद्ध भएपछि चिन्ता लेला हरिकन भजने कुन हो बेला भज नारायण भज नारायण भज हरिराम अनि पनि जन्मिनु अनि पनि मर्नु अनि पनि गर्भैतिर गई पर्नु अब त प्रभुजी पार लगाऊ यो भवसागरबाट उठाऊ अनि उही दिउँसो रात र हप्ता पक्ष र तिथि ऋतु बार घुम्ता महिनै नै र वर्ष उनै छन् आयु कत्रन कैति उनै हुन् भज नारायण भज नारायण सज्जन हो जो भन सकिँदा काम छ ठट्टा पानी सुकेपछि पोखरी झुट्टा धन सकिएपछि जान बिरान तत्त्व बुझेपछि संसार हिटुना भज नारायण भज नारायण भज राम हितमित सुत जन तन धन नारी गोठर खेत पशु घर बारी सबै जाइका ताई रहनेछन् तिनका नै मल खेती लिनेछन् भज नारायण भज नारायण भज राम कसले यो जगमा मकन पठायो कति दिन बाँच्न छ जानु कता हो मनमा गुण यति बात गहिरो यो सब चौसके सपना शरीर भज नारायण।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: प्रत्येक सातक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजेको समाचार पछि
1: कार्यक्रम गीती कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीती कथा।

रेडियो सैलुम सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज को रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

हाईटेक नर्सरीमा उत्पादित गुणस्तरीय फलफूल जड़ीबुटी र विभिन्न बिरूवाहरूको भरपर्दो गन्तव्य कल्पवृक्ष बहुउद्देश्य नर्सरी फार्म। यहाँ लोरसल्ला, टिमुर, कागती, सुन्तला, जापानीज हलुआ बेद, जापानीज नस्पति, रेड किवी, ग्रीन किवी

नमस्कार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम बयानबे थप्लो सात मेगाहर्जबाट म बद्री प्रसाद सापकोटा। आज विक्रम सम्बत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन 2026 जुन 21 तारीख आषाढ 7 गते आइतबार सप्तमी तिथि। अब स्तुति गरौं। आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी

दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जय नई परे का घरे मन राखुन सबले दुर्योधन समान।

केशर कागेश्वर बागेश्वर फनल मणेश्वर पाटन कुम्भेश्वर सुनकोटी शर्मा रहे कि भ्रिंगेश्वर लेले मतिलेश्वर जय गाल दर्शन प्रभु करूं छलीला उन्हीं को चल न चोर प्रभु विषय अरुका कुन को राम हूं परमात्मा ते कहाँ भी खा।

ईश्वर को नाम फल हुने काम सब जन भक्त जन ने हो भजू भनी देखने आखिरी का पलना छेव मछी मध्य नारायण।